आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

वो आ गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: बनी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। नाम है ओल्ड इज गोल्ड। और दोस्तों बता दूं कि आज गणेश चतुर्थी है और क्या बोलते हैं यानी कि तीज भी यानी पर्व है, हिंदी दिवस भी है। तो आप सभी को इन तीनों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हमारे अनिल मेहता जी का जन्मदिन भी है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आप जियो हजारों साल। और तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और ओल्ड इज गोल्ड गाने के साथ ही फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम कर

बिल्कुल रब मुझे माफ करे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे ये सरफराज पटेल, यानी सरफू भाई जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम सलाम। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई। मुबारक हुसैन जी आप जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका। और जुड़ने वाले दोस्तों में दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, वेलकम है आपका भी। और आज मैंने सोचा था कि मैं ऑन टाइम आऊँगा, लेकिन आरजे आदित्य जी का फोन आया कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, यानी कि मैं लेना चाहती हूँ ट्रायल। मैंने कहा कि ठीक है भाई ट्रायल ले लीजिए आप। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए, यानी कि 10-15 मिनट के लिए उन्होंने एक शो किया था, बहुत दोस्तों ने सुना है, बहुत दोस्तों ने नहीं भी सुना है। तो उनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उन्होंने ऐसा शो करने की कोशिश किया। अब जो भी यानी कि कमी बेसी होगी उसको दूर किया जाएगा और उसके बाद उनके प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा। और जितने दोस्तों ने यानी सुना तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और हमारे एम ताहिर साहब जी, हाँ इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि क्रेडी हॉट स्टार इन परिवार में आरजे आदित्य जी का तहे दिल से बहुत बहुत खुशामद।

0: उम्मीद है और आपके इस नए शो के लिए ढेर सारी मुबारकबाद है। ओ थैंक यू सो मच, आपने सुना है इसीलिए आपने ये मैसेज किया भी है। और साहब जी भाई क्या भेजा है आपने, ये फीडबैक है या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज अगर फीडबैक है तो फीडबैक लिखिए, गाने की डिमांड है तो सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए। और आरिफ सिंधे जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है हमारे जानिशार अख्तर जी, ये बहुत बहुत वेलकम है जानिशार भाई आपका, ये है रूस से सुनते हैं हमें। और सुनीता गोप जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है सुनीता गोप जी झारखंड से। और आत्माराम पाटिल जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी आपका फाजिलका पंजाब से। मंगेश देशमुख जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मंगेश देशमुख जी आपका। और बागेश्वर निषाद जी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। और सर्वेश भगत जी, ये सेट फीडबैक है इनका, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और अनिल मेहता जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ईश्वर उनको खुश रखे, आबाद रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं ईश्वर से कि वो खूब खुशहाल रहे और अपने काम में खूब उन्नति करें, यही ईश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और निशांत राय भोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है निशांत राय भोले जी। और बिरजू जी, बहुत बहुत वेलकम है बिरजू जी आपका भी। और हमारे विष्णु चंद्र जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी विष्णु चंद्र जी। और निकलस जी वेलकम है आपका भी, इन्होंने शायद फीडबैक दिया है, अब फीडबैक दिया क्या दिया है दोबारा आप मुझे भेजिएगा प्लीज। अनिल मेहता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अनिल मेहता जी। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है शिल्पा बहन जी आपका भी। और बागेश्वर निषाद जी अच्छा ओके आपका भी वेलकम करते हैं। और हमारे एम ताहिर साहब भी लिखते हैं कि आप सभी को प्यार भरा आदाब नमस्कार जी, वेलकम करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और डिम्प जी के साथ चलते हैं आज की पहली डिमांड लेकर। डिम्प जी सुनना चाहती हैं आज सुबह जब मैं जगा, बिल्कुल आज सुबह जब मैं जगा और तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, सच में गाना सच में बहुत ही प्यारा है, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम।

फिल्म आग और शोला का ये बहुत ही बेहतरीन नगमा है, सच में दिल खुश हो जाता है जब भी सुनो। और वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि अर्जमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बर्थडे को विश किया। अच्छा जी, बस मेरा तो मैं तो सबका करूंगा। और कल है आरिफ सिंधी जी का जन्मदिन, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट भी किया है जो 11 बजे से प्ले होगा, तो 11 बजे से सुनना ना भूले। आरिफ सिंधी जी का स्पेशल रिक्वेस्ट ओनली वन रेडियो हॉट स्टार पे, जो आपको दीवाना बना दे। अर्षा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, यूपी सहारनपुर से वेलकम है आपका भी। और गजानंद सरकार जी लिखते हैं कि आज सुबह जब मैं जगा, आगो शोला का बहुत ही शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और आत्माराम पड़े लिखते हैं कि बहुत ही सुरीला गीत है वर्ल्ड इज गोल्ड, मजा आ गया सुन के। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि वेलकम आदिति जी, ओके। और यहाँ पे मीना इब्राहिम लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, अच्छा। और शट आउट में गजानन ने अनिल मेहता को हार्दिक बधाई दिया है, जी बिल्कुल, मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया है। और अगला जो डिमांड मैं लेने वाला हूँ वो गजानन सलोकार जी का ग्रुप का ही है, और सुनना चाहते हैं मोहब्बत है क्या चीज़, बिल्कुल। और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे सर्वजीत सेठी जी और निशांत राय बोले जी भी, तो सुनाते हैं आप सभी के पसंद का ये बहुत ही प्यारा डिमांड, मोहब्बत है क्या चीज़। सच में मोहब्बत है क्या चीज़, बताओ ना। इंजॉय द ट्रैक।

0: मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। और आर्जा दीदी जी यहाँ पे लिख रही हैं, यानी कि लाइव चैट में, कि गूगल से पूछ लीजिए। अरे बाबा, गूगल बाबा को सब कुछ नहीं पता होता है ना, वो हो सकता है अभी बता दीजिए तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। और यानी विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि तूने मुझे याद किया, गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और ये प्रियंका जी का कहते हैं, सुनते हैं।
1: आज सुबह जब मैं जगी

0: अमन जी, सॉन्ग बहुत अच्छा था।
1: थैंक यू।
0: और फेवरेट सॉन्गों में से एक सॉन्ग है ये भी, थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: जय अमन सर जी, सरजीत सेठी जी और गजानन सोलकर जी का पूरा ग्रुप का भाई और भी भाई का शामिल है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
1: जी। और मेरे पास और भी बहुत सारे फीडबैक हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये गजानन जी के ग्रुप और सरजीत सेठी जी सभी के पसंद सुपर हिट लाजवाब लगी है, सभी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे निशांत है वो लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, सभी साथियों गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आरिफ सिंधे जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। शाहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि मोहब्बत है क्या चीज़, ये प्रेम रोका सदाबहार सुपरहिट नगमा सुनने को मिला, मजा आ गया, जबरदस्त डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मोहब्बत है क्या चीज़, सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है। अगला जो डिमांड है आरजे अदिति जी का है, ये कली जब तलक, ये गाना सुनना चाहती हैं सभी के लिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और ये
1: आरजे अमर सर जी, आरजे अतिथि जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और मेरे पास और भी बहुत सारे फीडबैक हैं लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मैं क्या करूँ यार। यहाँ पे सलमान जी लिखते हैं कि आए दिन बाहर के फिल्म से ये बहुत ही लाजवाब गाला, यह कली जब तलक 100% ओल्ड इज गोल्ड सुपरहिट, लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और सर्वर डिस्टर्ब कर रहे जी, बिल्कुल इन्होंने भी कहा कि सर्वर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि आर्य अदिति जी बहुत बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच आपका भी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी नंदलाल यादव जी। साथ ही साथ रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एम ताहिर जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद अदिति जी का। और खुशबू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और नमस्ते। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अदिति जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद है। अगला जो डिमांड है वो हमारे ये तीन दोस्तों का है, जैसे कि हमारे अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी का सुनवाते हैं।
2: नमस्कार अमन सर, मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और गाने का बोल है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके जी। और इसी गाने में जैसे कि सर्वेश भगत जी,
1: अर्जे अमन सर जी, सुजन दया, नमस्कार नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है ब्रह्मचारी और गाने का बल है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरजंदा हाजीला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, पंच किशोर भगत, आनंद शिकार, प्रकाश, मणि कुमार, मणि कुमार, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद दिनु जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मुरज, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे सोनी जी, आर जे रत्ना जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में शामिल है, सभी को सुनर जी का जयराम जी के अमर सर जी।
0: ओके जी। और इसी गाने में आत्माराम जी,
3: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉट स्टार में भी ओल्ड इज गोल्ड में एक मूवी लेके आया हूँ सर। मूवी का नाम है ब्रह्मचारी और सिंगर है मोहम्मद रफ़ी और आर्टिस्ट है सर शम्मी कपूर और ममता जी। और गाने के बोला है सर, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आजकल तेरे मेरे प्यार के हर चर्चे जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या, तो यह गाना मैं सबसे पहले आपको अमन सर जी, सुंदरता की मूरत को अशोक देशमुख है, सर्वेश भगत जी है, सैयद उनू जी है, दत्ता कदम जी है, गजानन सालोकर है, शंकर संतोष एस काले जी है, काजल बाना जी है, बबीता जी है, कुंता बहन जी है, ज्योति खजवली जी है, आर्जे वंशिका है, आकांक्षा जी है, आर्जे रत्ना जी है और सभी सुनने वालों को बिल्कुल समर्पित है। सुना देना मैं आत्मा पटेल, थैंक यू।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और शामिल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि गाने बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, आत्माराम पंडित जी, सभी को पसंद बहुत लाजवाब लगी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, नमस्ते, वेलकम है आपका भी। और ओके, और राधा कृष्ण को भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और शानवाज जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी, सभी के पसंद ओल्ड इज गोल्ड लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार ऑल टाइम हिट आइकॉनिक सॉन्ग के लिए शुक्रिया। और अमन सर जी, आपने प्ले करके हम तक पहुंचाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं, धन्यवाद अमन सर, आपने हमारे फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही लाजवाब है, आजकल तेरी मेरी यानी प्यार की चर्चा हर जबान पर। जी बिल्कुल, मनमोहक गीत लगा है। और यहाँ पे निकलस जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: मिस्टर आर जे अमन, वेरी गुड इवनिंग सर। You know what? I'm trying my best. My Samsung phone, my iPhone, big, both of them, I updated. And I don't know what happened. I didn't receive your call. Can you tell me the process? Then I can do it the other way around. If you have that, you tell me please.
0: ओके, मैं इसके लिए आपसे बाद में बात कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूँगा और आपको मैं अपडेट दे दूँगा, बता दूँगा। ओके, फिलहाल मेरे पास और भी फीडबैक हैं यहाँ पे, यानी प्रमोद कुमार जी बहुत दिन बाद जुड़े हैं तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और इनका एक्सीडेंट हो गया था, माई गॉड, या अभी इनके बहुत दिन चोटें आई थी और अभी ऊपर वाले का रहम करम है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत आपका वेलकम है भाई इन प्रमोद जी, और बस आप हमेशा अच्छा रहें, सकुशल रहें, सही सलामत रहें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और लिखते हैं कि सभी दोस्तों का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि अच्छा जी क्या करें, आपको उधर फरमाइश भेजना है तो वहां भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ओके, और यहां पे यानी मीना जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गीता शरण जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गई, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, अगला जो डिमांड है वो मैं सुनाऊंगा आप सभी को। किन का, अरुण मंडल जी का, कोई शहरी बाबू कोई लहरी बाबू, इंजॉय कीजिए इस गाने को, लोफर का।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और फीडबैक में पास बहुत सारा है। निशांत बड़ी बहुत ही प्यारा गाना है जी। और जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच इस पसंद के लिए। और सरदेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख का और आत्माराम पाटिल जी का, हम तीनों भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी आपका इस गाने के लिए, इस फीडबैक के लिए। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका आमना खान जी। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड, ये है पसंद। और आत्माराम जी क्या कहते हैं?
2: शुक्रिया अमन सर जी, आपने हमारा तीनों भाई का सॉन्ग चला दिया, धन्यवाद। आत्माराम पटेल लिया बुलढाणा महाराष्ट्र से।
0: ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, आशा भोसले की आवाज़ में बहुत ही प्यारा नगमा सुनने को मिला, मज़ा आ गया इस गाने को सुनकर। और आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि अरुण मंडल जी के पसंद वेरी नाइस है। और नीतू सरन जी लिखते हैं कि बहुत ही ऐसा गाना है, मज़ा आ गया सुनकर। मीना इब्राहिम लिखती हैं वाह बहुत लाजवाब फरमाइश है, बहुत अच्छा लगा है। बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शाहनवाज लिखते हैं कि अब तो सर्वर ठीक से चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और अरुण मंडल जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि ओके फिलहाल अगला जो डिमांड है वो हमारे मंगेश देशमुख जी का है, सुनना चाहते हैं तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए ये कुदरत कला जवाब गाना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा फीडबैक देने के लिए गाने पर, और राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस है, और शिल्पा पे लिखते हैं कि बहुत ही ये बहुत ऐसा गाना है, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये कुदरत का बहुत ही शानदार और लाजवाब सुपरहिट डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गणेश चतुर्थी की, हरतालिका तीज की और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा है कि अदिति जी के प्रोग्राम के बारे में, जैसे ही उनका प्रोग्राम आएगा हमारे कमेंट भी आने लगेंगे, तो हम उनका प्रोग्राम अभी सुनेंगे उसके बाद ही कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट हमारे ऑटोमेटिक अंदर से निकल के बाहर आने लगते हैं। तो प्रोग्राम हम सुनेंगे उनका, कब से प्रोग्राम आएगा आप ज़रूर बता दें, तो हम उनका प्रोग्राम सुनेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: वेलकम जी आपका। नागेश्वर धाकर जी लिखते हैं कि तूने वो रंगीले कैसे जादू किया, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है, और जिस भाई की भी फरमाइश उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि सॉन्ग मेरा बहुत ही फेवरेट है। और मीना जी लिखते हैं कि वाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ओल्ड इज गोल्ड के लिए। रमेश मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाने तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि तूने वो रंगीले कैसे जादू किया, गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। गजानंद जी लिखते हैं कि मंगेश दसमुख जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे एम ताहिर जी का, सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड, तू लड़की नंबर वन है। बिल्कुल भाई, लड़की नंबर वन है।

0: बिल्कुल, मेरी सुंदरता की मुलाकात और खुशी है। फिलहाल फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ गए और नरेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच एम ताहिर जी को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एम ताहिर जी की डिमांड लाजवाब लगी है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि क्या चांदी जैसा तन है, गाना बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि झटकाश डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
1: अर्जय अमन सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद। और विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मस्त लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है, ओके। और निशांत है बोल लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और एम ताहिर जी लिखते हैं अमन सर जी मैंने इसलिए गाना रिक्वेस्ट किया था कि आप जरूर इसमें साथ देंगे, ओ थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा आमना खान जी का, आमना खान जी सुनना चाहती हैं जाने मन, एंजॉय कीजिए इस गाने को, आवाज़ सुनो है इस गाने में।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाला आरिफ सिंह जी लिखते हैं एम ताहिर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है नंबर वन लड़के नंबर वन है एम ताहिर जी लिखते हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जाने मन जाने मन। अगला जो डिमांड है हमारे इन प्रमोद कुमार जी का है, प्रमोद कुमार जी सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना।
1: तुम से ही खोया होगा
0: तो एंजॉय कीजिए भाई प्रमोद जी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, पास आ चुके हैं। रणवीर सिंह जैसा लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है। और इन प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे गाने को प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और अजय कुछ लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है। और ओके ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पे शाहिद जी अगला डिमांड आप ही का है, आपसे ही दोस्ती। शायद ये गाना बहुत ही प्यारा है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। मंगेश दसमुख जी की सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी प्यारी चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और यहाँ पे सरफराज जी इन बुलंद शहर वाले मुझे दिल से काम ले। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं जेठालाल से, ये गाना मुझे काफी अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी के लाजवाब बेहतरीन डिमांड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग के लिए, थैंक यू सो मच। और लाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो बहुत वो किनका है, हमारे शाहनवाज खान जी का है। शाहनवाज खान जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को। सभी दोस्तों को रेडी कर रहे हैं हमेशा की तरह।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच और शायद लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अम्मा जी गाना प्ले करने के लिए दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है वो गीता शरण जी का है, सुनना चाहती है चांद के पास जो सितारा है, सुना दिया, इंजॉय कीजिए।

वेलकम अकाउंट रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाने शाहनवाज लेते हैं कि छू लेने दो नाजुक फोटो को 100% ऑल इज गोल्ड सॉन्ग सुनकर मजा आ गया। इस गाने को सुनकर अच्छा ओके, तो ये तो आप ही की डिमांड थी ना, मतलब चांद के पास जो सितारा है वो बहुत ही काफी लाजवाब गाना है, मजा आ गया सुनकर। अगला जो डिमांड है हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी का है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए रणवीर सिंह जेठालाल जी, रूप तेरा मस्ताना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पर रणवीर सिंह जैसा लिख देगी, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है?

0: आरिफ सिंधु जी का। आरिफ सिंधु जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: अस्सलामु अलैकुम आरजे अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से आज के गाने के बोल रहेंगे फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। फिल्म का नाम है बीबी हो तो ऐसी, आवाज़ें दी है मोहम्मद अजी साहब जी ने और अनुराधा पौडवाल जी ने। डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, वंशिका जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे आकंसा जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे आदिति जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा। मैं आरिफ सिंधी गुजरात।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आप दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हैं और यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और रणवीर सिंह जैसा लिखते हैं कि अच्छा ओ माय गॉड आपने वो गाना कहा था, मैंने तो गलती गाना प्ले कर दिया आई एम सॉरी। ओके और गजानंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, सॉरी यानी गोविंदा खंडाते जी। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। ये फीडबैक सुनते हैं।
1: फूल गुलाब का लाखों में हजारों में ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग सुनवाया आरिफ सिंधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। अशोक
0: अच्छा ओके अशोक देशमुख जी निम्भोरा महाराष्ट्र से,
1: अशोक देशमुख निम्भोरा महाराष्ट्र से
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अमन जी मुझे चिनाब की और माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की, अगर आपको पता हो तो बताना ये चिनाब और हिजाब क्या होता है, क्योंकि आप टीचर हैं तो शायद आपको पता होगा।
0: मैं आपको बताता हूँ कि जो यानी कि जो मतलब यानी कि चिनाब है वो एक नदी है और जो हिजाब होता है वो मतलब यानी कि नकाब होता है यानी कि पर्दा होता है, ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि फूल गुलाब का गाना बहुत ही प्यार लगा है। और अर्षा जी लिखते हैं कि अमन सर जी यह सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि दिल के जज्बातों का एक खूबसूरत एहसास है, जितने भी पुराने गाने सुन लो लेकिन इस गाने की बात ही कुछ। और जी बिल्कुल सही कहा, अपना अगला जो डिमांड सुनिए राधा कृष्ण गोप जी का, सुनना चाहते हैं जाना फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना मेरी मोहब्बत।
3: मेरी मोहब्बत तेरी जवानी क्या।

0: संभल ओए मोच न आ जाए, गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो हम मेरी चलो ले जा
1: छल्ला निशानी। बिल्कुल, और मीना इब्राहिम जी थे, वाह क्या गाना है, बहुत शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा डिमांड का गाना प्ले कर दिया और सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी आपसे मैं यही कहना, आपसे मुझे यही कहना है कि मैं सही ढंग से फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा मोबाइल में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और गाने भी रुक रुक के आ रहे हैं, गाने भी नहीं सुन पा रहा हूँ और फीडबैक भी नहीं दे पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, फिलहाल गाना मैंने आपका प्ले कर दिया है, टेंशन मत लीजिए। और अर्शद जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये सदाबहार नगमा जितनी बार भी सुनो कभी मन नहीं भरता है, वाकई अनमोल ये गाना है बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की डिमांड लाजवाब लगी। अगला जो डिमांड है वो मैं सुनाऊंगा नंदलाल यादव जी की, सुनिए नंदलाल जी, एंजॉय कीजिए इस गाने को अपना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना अच्छा लगा है, ओके। और रजत कुमार लिखते हैं कि भाई नंदलाल यादव जी की पसंद सुपर हिट लगी है, मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, गुड सॉन्ग है। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए मेरा। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं क्या दानी है दोस्त है प्रमोद कुमार जी और नंदलाल जी, सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार लग रही है, धन्यवाद देते हैं। दत्ता जी लिखते हैं हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवा रहा हूँ नीतू शरण जी का। नीतू शरण जी सुनना चाहती है ऐ मेरी जोहरा जमी, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं, और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं और ये फीडबैक हमारे राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं राहुल पासी जी। दत्तक्रम जी भी लिखते हैं कि नीतू जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद है, उनको धन्यवाद देते हैं। और गजन सरकार जी लिखते हैं कि ये बहुत ही प्यारा गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी जोहरा जबी हिमना डी की आवाज़ में। और अजय कुछ लिखते हैं थैंक यू सो मच अमर सर जी गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड, शानदार डिमांड है। और हमारे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि आकाश पे दो चमकते चारे, बिल्कुल सही गाना है और अच्छा भी लग रहा है। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करना चाहता हूँ दिखाई दिए, ये शिल्पा बेन जी की डिमांड है।

0: खुद किया।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं। और मेरे पास राहुल पासी जी लिखते हैं कि अच्छा यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आज ये निशिल पाकबेन जी का डिमांड बहुत ही अच्छा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिखाई दिए वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड है वो यानी विभूति भूषण जी का है, ये सुनना चाहते हैं ये दिल और उनकी तमन्ना, शायद यही गाना है उनका, मैं सुनाऊंगा।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बज जाती रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और ये रहा हमारे इनकी डिमांड।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे राधा कृष्ण को देखते हैं कि अमन जी आज के सभी गाने बहुत मस्त बज रहे हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये दिल और उनकी निगाहों के साइल, लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही प्यारा नगमा है। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये दिल और उनकी निगाहों के साइल बहुत ही खूबसूरत ये नगमा है। और ये विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरे पसंद के गाने को प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वह हमारे मनीषा शर्मा जी का है, ये सुनना चाहती हैं ये वाला गाना तुमको हमारी उम्र।

दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना लिस्ट में है या नहीं, एक मिनट जरा मैं चेक करता हूँ आपका गाना लिस्ट में है या नहीं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी, ओह माय गॉड, आपका गाना तो सबसे पहला प्ले होने वाला था, मुझसे गलती कैसे हो गई, सॉरी।

वेलकम है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाले। अब मीना जी देखते हैं, वाह क्या बात है, सभी गाने बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और अगला जो डिमांड है वो पूजा भास्कर जी का है, वो सुनना चाहती है वो कहे तो से सजना ये गाना, तो गाना जरूर प्ले करूंगा। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना देगा। जनन जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और राहुल पासवान जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी के पसंद बहुत ही शानदार लगी है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इसके बाद से यहाँ पे बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि इस गाने के लिए शारदा सिन्हा जी को मात्र 75 रुपये मिले थे। बात 75 रुपया सिर्फ 1989 में। अच्छा। और अरे सिंध जी लिखते हैं कि मैंने प्यार किया गाना बहुत ही प्यार लगा। अगला जो डिमांड है ये मैं प्ले कर रहा हूँ दत्ता करम जी का, सुनना चाहते हैं क्या करते थे साजना, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में तो जादू है जी। और यहाँ दत्ता करण जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दत्ता जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। प्रियंका जी कहते हैं
1: क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, माना जुदाई का मौसम बुरा था लेकिन भी उसी का अपना मजा था।

इस गाने के लिए है। और खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, इन नाइस सॉन्ग है। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है अमन जी गाना आपने नहीं सुन पाया है ना भाई, मुझे लग रहा है अगला जो डिमांड है ये प्रियंका जी का ही अब, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं

0: रीति थी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
1: वेलकम जी आपका भी, और गजन जी क्या करते थे साजना, बहुत ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बागेश्वर निशा जी, रीते लाल दुपट्टा मलमल का बहुत ही प्यारा गाना है। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त गाना है, धन्यवाद देते हैं।

0: वेलकम बैक और रेडियो जो दीवाना बना रहा और ये फिर बैक।
1: कब ना तुझको याद किया, अच्छा। कब ना तेरा नाम लिया, जब ना तुझको याद किया, जब ना तेरा नाम लिया। दिन ऐसा ना गुजरा, दिन ऐसा ना गुजरा, ऐसी रात हुई ना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में लगी ना। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: ओके जी, और यहाँ पे मनीष शर्मा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और दत्ता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी आपका, गजानंद जी लिखते हैं कि प्रियंका जी का पसंद बहुत ही शानदार लगे राम अवतार मूवी का। और अभिषेक चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, अगला जो डिमांड है।

0: कम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और मेरे पास फीडबैक आए हैं राहुल पासी जी ने ये प्रियंका जी गाना तो मुझे बहुत ही पसंद है, उनको धन्यवाद देते हैं। और दत्ता जी ने कि मीना इब्राहिम जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है और मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और ये फीडबैक
1: अमन जी ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है बट थोड़ा गला खराब हो रहा है, गुनगुनाना चाहती हूँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में आ जाए रंग के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए और आता ही तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो थे याद में, बट आजकल तो कोई खत लिखता ही नहीं है याद में, सब मोबाइल में व्हाट्सएप पे ही लिख देते हैं जिसको जो लिखना होता है।
0: बाकी सॉन्ग आजकल यानी मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, इसलिए ऐसा है। गजानन जी लिखते हैं कि लिखे जो खत तुझे तेरी याद में गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और नागेश्वर धाकर जी लिखते हैं कि मुझे यानी उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना बहुत ही बेहतरीन डिमांड लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं एंड थैंक यू सो मच यानी प्रियंका जी का। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि लिखे जो खत तुझे गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, सुनना चाहती हैं यार मेरा प्यार, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मनीषा जी लिखते हैं कि अमन जी, जब तक आप गाने में नहीं गाते हो तब तक गाने में रौनक नहीं आती हो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे इनविजिबल चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही मस्त है और बहुत ही जबरदस्त है। अगला गाना जो डिमांड है वो आप ही का है भाई इनविजिबल जी, और आपने जो गाने का डिमांड किया है वो मेरा वो फेवरेट गानों में से एक है। तो सुनाते हैं आपकी पसंद का वो गाना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे सुनीता गोपी देखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं
1: अमन जी अपना सॉन्ग बहुत ही मन से और दिल से गाया है जो कि मैं दो लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ
0: अच्छा
1: साजन

0: गला खराब है, बट आपकी जो वॉइस है, मैं आपने जो सॉन्ग गाया है ये बहुत ही प्यारा गाया है।
1: थैंक यू सो मच आपका भी और गजान अंजलि के साजन आ जाओ शब्बीर कुमार आशा भोसले की आवाज में, बहुत ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि साजन आजा रे बहुत ही बेहतरीन गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आगे आग से बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मजा आ गया सुनकर। और निकला जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: ओ गुडनेस मी आजे अमन,
1: यस सर, आई
2: एम ट्राइंग टू आस्क माय गूगल अबाउट दिस सॉन्ग, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, थैंक यू सो वेरी मच सर, ब्यूटीफुल सॉन्ग, गुड चॉइस।
1: वेलकम सर। और यहाँ पे अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ बागेश्वर निसार जी का, अकेला गया था मैं और मेरे संग संग आया यादव।

0: करके मेरे को रेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अगला मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास, और यहाँ पे गाना जी लिखते का अकेला गया था मैं, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि फिलहाल यहाँ पे ये फीडबैक।
1: अमन जी, ये जो साजन आ जाओ था, ये जिसकी भी डिमांड थी वो बहुत ही प्यारी डिमांड थी, क्योंकि ये सॉन्ग भी मुझे पसंद है। बस इस सॉन्ग के मैं एक दो अंतरे हैं छोटे छोटे, वो गुनगुनाना चाहती हूँ, वो बिना गुनगुनाए रहा ही नहीं जाएगा।

0: तुझसे कभी मर जाऊंगे जीते जी, तू जो नहीं तेरे बिना क्या है मेरी जिंदगी। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, तो रहा नहीं गया गाना।
1: लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है तो आप गा ही क्यों रही हैं? ओके, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अकेला गया था मैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा। अगला जो डिमांड है दीपक कुमार जी का, सुनते हैं।
2: अमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी रेडियो हॉटस्टार सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा से बोल रहा हूं, और मेरी आज की फिल्म है, फिल्म का नाम है तोहफा, और गीत के बोल हैं, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। तो सुना दीजिए, धन्यवाद।
1: ओके जी, एंजॉय कीजिए अलबेला मौसम।

0: बिल्कुल, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और वैसे यहाँ पे से गाना बहुत ही प्यारा है, और ये फिर सुनते हैं।
1: अमन जी, अभी आपने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप गा ही क्यों रही हैं, बट आप से बेहतर कौन जान सकता है कि जिसको गीतों से प्यार होता है, संगीत से प्यार होता है, और जिसके ऊपर सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है, तो वो गीतों से दूर कैसे रह सकता है, वो बिना गाए रह नहीं सकता। तबीयत ठीक नहीं है बट ओके,
0: मतलब बिल्कुल मैं आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इस समय मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, और दर्द होने के बावजूद भी मैं गीतों के साथ गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत मतलब यानी कि सही नहीं थी, यानी सिर में बहुत ज़्यादा तेज था दर्द, लेकिन अब मैं फिलहाल ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, इसलिए गा भी रहा हूँ। और गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अलबेला मौसम भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आरजे सोनी जी की पसंद ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सच में बहुत ही प्यारा है। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: Mr. Ajay Aman,
0: yes sir,
2: this song, so one of the best song in your whole program today,
0: yes,
2: or the number one song, wow, kya baat hai, dhanyabad, wow,
0: dhanyabad,
2: I'm so happy.
0: Okay, aur ye feedback sunate hain.
3: Aman ji, aapne mera gana play kiya, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको अच्छा हुआ समय पर याद दिला दिया, पर गाना आपने आधा ही बजाया, आधा गाना होने के बाद कुछ 30 त्यौहार के बारे में उसमें बताया गया था, तो वो बजा ही नहीं गाना, आधा ही बजा, इसलिए मैं आपको आधा शुक्रिया दूंगा, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनीमालवा मध्य प्रदेश से।
0: कोई बात नहीं, आधा शुक्रिया ही दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आरजे सोनी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है आरजे सोनी जी, थैंक यू सो मच, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अगला जो डिमांड है वो राजेश कुमार जी का है, सुनवाता हूँ आप सभी को, एंजॉय कीजिए। और कल बहुत से दोस्तों की वो डिमांडें छूट गई थी, वो सभी दोस्त मुझसे आज भी नाराज है, भाई आप लोग नाराज ना हुआ कीजिए, एक दिन गाना नहीं प्ले होगा तो क्या होगा, हर दिन तो प्ले होता है ना।

0: के यारो फिर मैं सुबह शाम के तेरी मेरी।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना सुन जी। मैं तो नाराज नहीं होती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप बहुत समझदार हैं इसलिए नाराज नहीं होते, और जो लोग मतलब उनको समझ में नहीं आता है वो लोग नाराज हो जाते हैं। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लेते हैं, गाना बहुत ही प्यारा है। गजानंद जी लेते हैं कि एक पर्सन वाली गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है अरशद जी का है, मोहम्मद अरशद जी सुनना चाहते हैं, क्या हुआ तेरा वादा। भाई क्या हुआ अब तो बताना पड़ेगा क्या हुआ।

0: जी अगला डोर डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो धनेश सिंह मिश्रा जी का है, लेकिन फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, पहले शामिल करता हूँ।
1: अमन जी, जैसे आपका सर दुख रहा है तो आप गाना गाए बिना नहीं रह सकते, उसी तरीके से मैं खाना खाए बिना रह सकती बट गाना गाए बिना नहीं रह सकती हूँ।
0: ठीक है, तो आज खूब घर पे गाना गाए कीजिए और खाना मत खाया कीजिएगा आज, ओके। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, गाना बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। अर्षा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, ओ माय गॉड आप सुन रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं सुन रहे होंगे। और गजानंद जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी।

0: रेडियो मैं कौन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे मेरे पास बहुत सारे सुनने का चुके हैं और ये सुन रहे हैं।
1: धन्यवाद अमन सर गाना सुनाने के लिए, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।
0: वेलकम जी, और आपने तो यानी कि फीडबैक में ही आपने गाना मतलब क्या बोले भेज दिया है, मुझे प्ले करना पड़ा क्योंकि यह सिर्फ बेनती देते हैं कि सारे शहर में आपका कोई नहीं, बहुत ही बेहतरीन गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि सारे शहर में आपका कोई नहीं, ये बैराग का बहुत ही प्यारा गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनने को मिला, मजा आ गया है। और ये क्या कहते हैं,

0: अमन जी नमस्कार, नमस्कार। और मैं कोई नाराज वगैरह नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ बोलना पड़ता है जब बोल देता हूँ। और आपके प्रोग्राम के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं पहले सोचता था कि गाने ही गाने प्ले हो ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा लगेगा, पर गाने ही गाने जब बजते हैं बिना फीडबैक के तो मज़ा नहीं आता है। तो फीडबैक जब शामिल होते हैं और गाने बजते हैं तो इन दोनों का मज़ा अलग ही होता है। तो मैं धन्यवाद आपका, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
1: जी हम लोग इस पर हर तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, इसलिए तो ये करना पड़ता है। लेकिन जो आरजे अदिति जी का शो आएगा उसमें फीडबैक शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक घंटा का शो होगा इसीलिए। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मुझे बहुत ही प्यार लगा है, धन्यवाद देते हैं। राजेश कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और राहुल पासे जी लिखते हैं कि अमन सर जी अरे बाबा आपका भी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और अर्षद जी लिखते हैं कि अमन सर मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ और प्रोग्राम का इंजॉय कर रहा हूँ, बस फीडबैक का मौका कभी कभी ही मिलता है। अच्छा जी कोई बात नहीं, सुन रहे हैं ना, बहुत ही काफ़ी है मेरे लिए। और अगला यहाँ पे ये फीडबैक सुन,
2: अमन सर जी मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सभी दोस्तों का।
1: अगला जो डिमांड है हमारे धनेश मिश्रा जी का है, सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना मोहम्मद अजीज की आवाज़।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं तो शामिल करता हूँ। और राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि कसम से और अब्बा कसम से गाना बहुत ही प्यारा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये कसम से और मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं सो स्वीट सॉन्ग जी बिल्कुल। और ये फीडबैक सुनते हैं
1: अमन जी, ये जो राहुल पासी जी ने जो सॉन्ग सुना है ये फर्स्ट टाइम ही सुना है, बट सॉन्ग बहुत अच्छा है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि उस दिन राहुल पासी जी ने कहा था कि वो जिस लड़की को पसंद करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट ये देखिए कि वो दुनिया में नहीं है वो लड़की, लेकिन राहुल जी उनको कितना आज भी लव करते हैं, उनके लिए रोते हैं। तो ये उस दिन उन्होंने आकांक्षा जी के प्रोग्राम में ये बताया था, तो सुन के बड़ा दुख लगा था। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा है।
0: मैं तो सुन ही नहीं पाया था। फिलहाल मैं बता दूं अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ यानी कि जितेंद्र जी का है। और जितेंद्र जी सुनना चाहते हैं कौन सा गाना था, मैं बताया था ये गाना, सॉरी ये गाना।

करके मेरे को रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और फिर व्यक्ति मेरे पता है राहुल पासी जी, जीते हमने अपना आपने मेरा गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे चरण जी मिलते हैं अमन सर जी, गाना सुन सकते तो मजा ही आ जा रहा है। और दीपक कुमार का एक बार जीते कि अमन जी अब मैं समझ गया हूँ आप अच्छा जी, रिपीट बैक।

0: अब बिल्कुल आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, आप गाते रहे ऐसे ही। वैसे अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा निक्की खान जी का, सुनना चाहती हैं हवा के साथ साथ घटा के संग संग, एंजॉय कीजिए।
1: अरे अरे ए ए

करके मेरे को रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और खुशबू जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू निक्की जी, इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये पर्वत के पीछे वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और आमना खान खान यहाँ पर लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और निक्की जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो यानी कि कायनात जी का है और वो स्पेशली डेडिकेट करना चाहती है एम ताहिर जी को। सुना दिया, एंजॉय कीजिए।

0: मैंने कहा था थोड़ा सा बजाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बजा रहा हूँ। और अगला ये गाना।
1: हेलो आरजे अमन सर,
0: बोलिए।
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: अनिल मेहता सूरत गुजरात से।
0: वेलकम जी।
1: आपकी पसंद का कोई भी गाना सुना दो, आज मेरी बर्थडे है तो बर्थडे का कोई भी गाना सुना दो।
0: अच्छा।
1: और ऑनलाइन सुनने वाले सभी दोस्तों को और साथ साथ आरजे सभी आरजे को डेडिकेट रहेगा। थैंक यू।
2: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू।

बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू यू एक बार फिर से। और शिल्पा पेंसिल से ये कैना जी की डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आई है, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी खुशबू जी लिखते हैं कि वाओ बहुत ही प्यारी डिमांड थी यानी आपकी यानी कैना जी और राधा कृष्ण को देते हैं बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करूँगा यानी मेरे नानी जी का है और ये सुनना चाहती है खोया खोया।

0: और अगला जो डिमांड है हमारे अब्दुल जब्बार जी का है, इसके बाद मैं अपना गाना मैं आप सबके लिए प्ले करके जाऊंगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।
1: नफरत की दुनिया को छोड़ के।
0: और हाँ, यानी कि पूजा भास्कर जी आज विनर बनी है, उन्होंने अपना गाना भेज दिया है, मैं उनके गाने को भी इसके बाद प्ले करूंगा, फिर अपना गाना।

ओके तो अब रहा ये मेरा डिमांड आप सबके लिए, स्पेशली मेरी सुंदरता की मुराद जी, इन खुशी जी के लिए है, एंजॉय कीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: जहां मिले दो जवान।

0: चकाचक हिरलो पान चबा
1: आओ
0: आहा।